0: दोहा को सारे गीतों का जैसा सारो वादा नंता
1: नो
0: प्रॉमिस
1: प्रॉमिस
2: एमी हूँ था अबदो एकु गबो मा बाउ दुवे.

0: मी मरियम रिफ्का रशीद, रिफ्का गैड, दिवे ही एफएम, दिवे ही नाइक,
1: दिवे ही एफएम, नो दिहे के मेगा हर्स,
2: दांतका बुलिफवी, फिक्याम रीत लवत
3: सफा, रोए आदेश कुरिये,
4: नो दिहे के मेगा हर्स, दिवे ही एफएम के में हाय होते,
5: पाय लवत को मिस पेरी के
6: लिए कौन फिल्म है नो मैं की हम
1: दिवे ही के मोनिफु ही फिल्म है देनो मुगा अब दोस
7: Love it, Kafaho.
8: Love it.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा डी का खबर आया को दिव्य एफएम के हुंतरे नामे बदल कुरी अहमद रमला मस्तवाते के तेग मसले अंग हल हो तो मगे नया कानून ही बदल तका एक लबाली उसूल तक की में मसला फुड़ा दाई रह गई आए को कमा गुड़ों हुरी इदारा तक गुड़ी किंग फेवर तका अदब तक खंडे यलों हरों तना कुर्म कुरे वुनो वरा मुहिम और मसक ते कमा रही सुल जम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइस विदार विजय एमनि फान मे फदेम विदारवी पाइने लकवा मे गुतुम फाहा कुरा मस्तो आते के चादे कुला मसे के कुरा दो हा गुलिकेन देवी खास मैसेज का सिहि दायरा के मशोता कुरिय केंदे मन होरि दाते त फिलवा हॉस्पिटल तो के मसे के मि दौरु के तेरे का निम्मा लेवेने का मसे हदा आइलाया इज्तिमा एहिया बेहे बुजार वजीर गीला अली विदार वजे वजीर मे विदार वे रई तो मजली हो के मेंबर उनकरे भी सवाल तक जवाब दे बमो सिहि दायरा के कुरिय केंदा एके मशोता कं अलियल वाला बमो से हदा आइलाया इज्तिमा एहिया बेहे वजीर गीला अली विदार वे हॉस्पिटल तक सिहि मरकज द तरक्की कुरमंग एक कुफुन तका हवाल को फवाखमा नमवेस एक हिसाब तका होरे ए मसे के त लास्वे फवाखम वजीर फाह कुरेबी फॉर्मलक सिटी का सरकारुं इमारा कुरे खिरित कुरवाना बेहे मरकज के आउटरीच सेंटर हुड़वाफी फॉर्मलक बेबी खास रस्मियाते का मि सेंटर हुड़वादे भी इस्लामिक अंत तका अवगाफा बेहे वजारक स्टेट मिनिस्टर अलुस्तास अब्दुल्ला सऊदान मि आउटरीच सेंटर का फर्स्ट क्लास रूम नमाद कोटरी का हिप्स टेस्ट रूम का ऑडिटोरियम का लाइब्रेरी का ऑफिस पय का मीटिंग रूम हिमेने राज्य जब पेरुकुरा विह गेहु गे मेंबर देनेगतुम बेनुम वा मौलुमात एकुरमा कुले का वायदो एकुलावाला गेजेट का आमु कोफी मौसमी बदल तक आतिमा वेटा हकते आबहे वुसारन तंफिस कुरा में कवायद मिहार वने अमल कुरम फशाफा मिकवायद की कानून नंबर नुएंग ओब्लिक अधिहास इकाविस क्लाइमेट इमरजेंसी कानून के बाविस वन मादाय रियाय को ए कानून के फसवन माद फंसविस वन मादाग हाइंग बारु लिबिगें एकुलवा लाफावा गवायदे मिकवायद की राज्य जव बेरु कुरा विह गेस मिंको दफ्तर कों अदि विह गेहु गे मेंबर कशवर कुरमा गुले इतारे इंतजाम तका इजरा त बयान कुरा गवायदे वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट वीआईए के फाड़ुतेरे का ऑपरेशन तंग हरदनाकों अवस्कुर मटका हाब पोर्टल के नमुगा खास डिजिटल प्लेटफॉर्म में तारफ कोफी मे प्लेटफॉर्म बेनुं कुरानी एक मरहला था का बहाल आगें कमा मॉल से एयरपोर्ट्स कंपनी लिमिटेड एमएससी लुम्बिदार्वे एमएससी लुम्बिदार्वे मे प्लेटफॉर्म के सबबुं वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फाड़ुतेरे का उलंद फहर बेबुमा हुद्द तकं एदि हुशेळुमगे कंकं हरुतनाको खिदमत के फेमवर रंगळु कुरुमा उळंतोगे वेरिना ऑपरेटरुना फळवरिं अदि कमा बेहे फरातका देमेदु गुळुम बदहि कुरेवि देफरात विस खिदमता लुइफसे हवेगें दाने कमा फन्नी एकेक उफेद्दुन तकं खासको केन दिबेहि राज्य को फद्दा फावा डिजिटल मार्केट प्लेस क्रिएटोल इतुरं हरदना कुरमटका विजिट मॉल्स कोऑपरेशन ना पब्लिक सर्विस मीडिया पीएसएम आदमेदो पार्टनरशिप एक आईएम कॉफी मे एबसमगा विजिट मॉल्स कोऑपरेशन ग फरातन सोयकुरे वीसीओ आदि मैनेजिंग डायरेक्टर इब्राहिम शिवरी आदि पब्लिक सर्विस मीडिया ग फरातन सोयकुरे वी मैनेजिंग डायरेक्टर अहमद शकीब मे हिसाबो मेक डेग दन्नो मंगा खबर निमुनी हेमे हाय हुंतरिना बाजवेर उफार वकत कोलकंगेदे अस्सलाम वालेकुम।

0: ओके अजमीन हेमी मा वर रंगला स्कोकुरी हम प्रोग्राम है गोतुगा मिजो बलाने भी प्रोग्राम है किंगे हम हम ए हुनर ए बहुरी हम मी जवाब त दिनु गवे सिंगे देख हम ए आई की मी मी फार के वर्ल्ड कप के हम हर मिनट हम मिस्टर गिनेस मुगे प्रेजेंट रे गोतुगा हम ती अदा कुरा रोल अव समसरी बा साब सिंगे हेला ती बिगिन नाय की हर मिनट वर रंगला गिनेस ते कम स्वर बड़ा शुक्रिया इंगे
1: शुक्रिया
0: एम दे हिंगा निम्मा लो मी फिल्म गे में देला मी तिंगे अजमीन के फरातुंग आदि एलावा एम ए बजे प्रोग्राम गे हिमना ल कोला वे दिंगे निस्ते
1: ehim film gelave genna mado aswaagote ki komme kame kuram beenu asme nabudas bunawa ke kame kuram beenu wa mi kame kuram bahana yan onna na da dakkana bahana winus ne make excuses and then stubborn kan hunna jene kan kurumuga so e ekala motivation ne ganna lave emmi demme mi bunne nu ane mi meri kum ga inna dil ye ziddi hai
0: okay ehim ilawa
1: do ilawa erong ilawa do hai mas
0: ओके मेले वे आके मे हसा मे हफ्ता के मूवी मूड मे शो मे निमाले ने देसे फर अजमीन अमर खास शुक्र मे जोमेंगे मे वर्ल्ड कप के फोरी के तेरे अजमीन अस बदल को दिनी थी इंगे मेले वे आके मे हफ्ता के मूवी बोन निमाला फकी वाला अस्सलाम वालेकुम

0: चलती रही एफएम 91.1 मेगाहर्ट्ज़। दिवे ही एफएम, दिवे ही नायको, नोदिया 1 मेगाहर्ट्ज़।
1: अलिनोर

0: नौ दी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम असुरु नमा दो वगत
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: आदित्य बा मी हुन जिने या खैरिन वाश हम आकाश वरुण ऐ होतुरु कम बोडवेगम वा फाफे कम गावी आदि मगेग्गे गोतुं एकांत हा दहा नुबावेगम वे
1: वला तक्तुलु नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाह इल्ला बिल हक

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: पंगा लेना है?
1: इरादा तो नहीं है पर इतराज भी नहीं है।
2: रिपोर्ट का फाहकुरे चेलाताव के इतुरुं नेटफ्लिक्स उम्मिवणी किनबाई के मकबूल कं होदाफवा एवेटा द लास्ट एया बेंडा के सीजन ते के रस्मी चेलाविस दक्का लाफा पे चेला फेनिकेंदनी एंग एनगे आत बेंडिगे टीचरु टोफा बदलवा मंजरा आदि वरुगद अजूला या कुरिमत लाथं मे आ सीजन के प्रीमिया पुरासर दो ए जून फंसवियु का नेटफ्लिक्स का प्रीमिया कोफवायर फुरतम सीजन कमुदिया पेफुरना मि ट्रेला एकनि फेरुनस यागिन वाणिकमकी सीजन दे कुरियवरे मा बोडा मा फुरिहमे आदि मा फोरिगत वाणिकम।

दिल से गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिसपे पहरा। झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिसपे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं।

ইলিয়াস কুল্লে গতকা মি দুনিয়া দুক দিউমাকি ইলিয়াসকে আইলা এ লিবুনু এমমে বড় সিহুন ইলিয়াস নিয়াবুমং এন ফুলা দায়রাগে কুরামুন দিয়া হুরিহা বিয়ফারেং হিংগুমগে বড় জিম্মা এককং এলেকেন দিয়ে এনেগে হুরি হামাইকানি আংহেন দরি ফুলু আসকাগে কোণুগা বিয়ফারিগে উকুলতাকং এহা ফারিতানুং আসকায় মি বড় তাকলিফুং আরাগনে উনি এনেগে হায়াতুগে বাবেরিয়া শাফিকে সববুন এমি ফুরতম দুহুম ফিশকিং শাফিয়াই আসকাগে হিয়ানি ফাতাং ক্যারিগে হুরে কোম্মি কামিকান নিকং ইখলাস তরি কামাইগো এহি তরিবামুন এহনমবিস ইলিয়াস নিয়াই ফহুং ইমারা কুরুমগে মাসেকে ফশাফওয়া গেস্ট হোস্কে মাসেকে গতি ইক্কুং হুট্টিফা এতন্নি মুমা বেনুবা মালি ফুদুন তরি কন্নে তুমাইকো এমি ফহুং এতং এহেম বিয়ে ফারবেরিয়ক বিক্কালং এমি হুন্ন মজবুরবি ಹಮಯಾಯಿಗು ಇಲಿಯಾಸ್ ದುನಿಯೆಗೆ ಹುರಿಯರು ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಕಮಾಯಿಗು ಹಿಂಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವೆಸ್ ಏರು ಹಿಂಗೆ ಫೆಂಬರುಗ ಮಾ ಗಿನ ತುವಹಕು ನುಹಿಂಗುಣು ಮೆನೇಜ್ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸ್ಸಲ್ ತಕ್ಕುರಿ ಮತಿ ವಾಂ ಫಿಶುಮುಂ ಅಸ್ಕಾಗೆ ಎದುಮುಗೆ ಮತಿಂ ಎನಗೆ ಬೊಡು ದಾತಗೆ ಕುಜ್ಜಕ ಎ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಿಂಗುಂ ಹವಾಲ್ ಕುರಿ ನಮವೆಸ್ ಮಿಯದು ಎ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಫಳು ತನಕ ವೆಜ್ಜೆ ಖಿದ್ಮತ್ಗೆ ಫೆಂಬರು ಇಂತಿಹಾಯ ದವ್ವೆ ಎತನ ವಣ್ಣಾಣೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಸ್ಟಮರಕು ಮಿಹಾರಕುನುವೆ ಮಿಹುರಿ ಹಾಗೆಲ್ಲುಮಕಾಯಕುವೆಸ್ ಅಸ್ಕಾಯಾ ಶಾಫಿ ಹಿಂಬರಾಯಕು ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂಗಣ್ಣನಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ರಂಗಳಂ ಹಿಂಗೇಥೋ ಇಲಿಯಾಸ್ ನಿಯಾವೀರು ಎ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಕಿ ಮಾಫುಶಿಗೆ ಹುರಿ ಎಮ್ಮೆ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆಕಿನ